हुए उनकी सेहत और सलामती के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कतर और भारत के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात में मजीद तरक्की और इस्तेहकाम की ख्वाहिश जाहिर की। रियासत कतर के बैरून मुल्क सफारत खानों में भी साहिब सुमू अमीर अलवालिद शेख हमद बिन खलीफा अलसानी के इंतकाल पर ताज़ियत का सिलसिला जारी रहा। बोस्नियाओ हर्ज़ेगोविना के शहर सराजीवो में सदारती कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर डेनिस बेचरविच ने कतरी सफारत खाने जाकर ताज़ियत का इजहार किया। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में वज़ीर ख़ारजा सोगियोनो ने कतरी सफारत खाने में हाज़िरी देकर अफसोस का इजहार किया, जबकि इटली के शहर रोम में ऐवान नुमाइंदगान के सदर लोरेंजो फोंताना ने भी ताज़ियती पैगाम पेश किया। इसी तरह तंजानिया के शहर दारुस्सलाम में वज़ीर ख़ारजा और मशरिकी अफ्रीका तआवुन महमूद साबित कॉम्बो, जबकि पोलैंड के दारुल हुकूमत वारसा में सदर जमहूरिया के बैनुल अक्वामी पॉलिसी ब्यूरो के सरबरा और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्सन पशिडिच ने भी कतर के सफारत खानों में जाकर ताज़ियत का इजहार किया। तमाम रहनुमाओं ने रियासत कतर, उसकी क्यादत और आवाम से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए साहिब सुमू अमीर अलवालिद शेख हमद बिन खलीफा अलसानी के लिए मगफिरत, रहमत और बुलंद दर्जात की दुआ की। साहिब सुमू अमीर अलवालिद शेख हमद बिन खलीफा अलसानी के इंतकाल पर बैरून मुल्क कायम रियासत कतर के सफारत खानों और मुस्तकिल मिशन में ताज़ियत का सिलसिला जारी है। गियाना के सदर डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ने जॉर्ज टाउन में कतरी सफारत खाने जाकर ताज़ियत का इजहार किया, जबकि पुर्तगाल के वज़ीर ख़ारजा पाओलो रांजल ने लिस्बन में कतरी सफारत खाने में हाज़िरी दी। सिंगापुर में डिजिटल तरक्की और इतलाआत की वज़ीर की इतलाआत की वज़ीर जॉसफिन ट्यूनो ने वज़ीर ख़ारजा की जानिब से कतरी सफारत खाने में ताज़ियत पेश की। इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौकूता। सामईन, दोहा और उसके नवाही इलाकों में इस वक्त असर की अजान का वक्त हुआ जाता है। इसी तरह उधर न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास के सदर इनालेना बेरबुक ने अक्वामे मुत्तहदा में कतर के मुस्तकिल मिशन के दफ्तर जाकर ताज़ियत का इजहार किया। ताज़ियत करने वाली शख्सियत ने रियासत कतर, उसकी क्यादत और आवाम से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए साहिब सुमू अमीर अलवालिद शेख हमद बिन खलीफा अलसानी के लिए मगफिरत, रहमत और जन्नत अलफिरदौस में आला मुकाम की दुआ की। उर्दू रेडियो एफ एम 107 से इस वक्त की खबरें अपने इख्तिताम को पहुंची। स्टूडियो से तकनीकी मावन मोहम्मद असुडानी और न्यूज़ स्टूडियो से इस्माइल खान को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।